तो अपने वतन जाएगा, सभी छोड़ चलेंगे अकेला तुझे, सभी छोड़ चलेंगे अकेला तुझे, अकेला तू

ये नालायकों पर है रब का करम. वी नो वी आर नालायक, वी नो वी आर नॉट डिजर्विंग ऑफ एनीथिंग, एस्पेशली बीइंग इन दैट मुबारक लैंड एंड मुबारक प्लेस एंड गेटिंग डेथ इन दैट प्लेस एंड बीइंग बरीड देयर. वी नो वी आर नॉट डिजर्विंग, इट इज जस्ट रब का करम दैट वी आर देयर इन मदीना शरीफ, और हूएवर इज रिजाइडिंग देयर इन मदीना शरीफ. It is Allah Ta'ala's fazal and Allah Ta'ala's ihsan that He created a means for their maghfirat if they are seeking it. Shafa'a.

गरचे पुर खता है पर कहा जाए तेरा बंदा, तेरे दर पर तेरा बंदा बउम्मीदे करम आया।

है बस अगर तेरे गुलिस्तान में सब गुल है बस एक अगर हूँ तो खार में हूँ तेरे गुलिस्तान में सब गुल है बस एक अगर हूँ तो खार में हूँ मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो बहुत ही गफल

तेरा मगर होशियार रहूं, होश रहे ना मुझको किसी का, तेरा मगर होशियार रहूं।

हरदम जिक्रो फिक्र में तेरे मस्त रहूं सरशार रहूं। होश रहे ना मुझको किसी का तेरा मगर होशियार रहूं।

रहे तलब में सवार सब हैं प्यादा मिसले गुबार में हूँ। रहे तलब में सवार सब हैं प्यादा मिसले गुबार में हूँ। तेरे गुलिस्तान में सब गुल हैं बस एक अगर हूँ तो खार में हूँ। तेरे गुलिस्तान में सब गुल हैं बस एक अगर हूँ तो खार में हूँ। मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो बहुत ही गफलत शिआर में हूँ। रहा मैं बेकार जिंदगी भर बस अब तो मशगूल कार में हूँ। हर दम करूँ मैं ऐ मेरे बारी अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह।